जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदन ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदन इंदर इंदर आसन बैठे देवतियां दर नाले गावन तुदन सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदन साध बिचारे गावन तुदन जति सती संतोखी गावन तुदन वीर करारे गावन तुदन पंडित पढ़न रखी सूर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदन मोहनिया मन मोहन सुर्ग मश पयाले गावन तुदन रतन उपाय तेरे अठ साठ तीरथ नाले गावन तुदन जोद महाबल सूरा गावन तुदन खाणी चारे गावन तुदन

तिल वडियाई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखण पाहे वड्डा ना होवे घाट ना जाए।

सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह।

सेवह जो सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जान जुग मैं सुखवासी से मुकत पए जिन हर त्याया जी तिन तूटी जम की फासी जिन निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी जिन सेवया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाह।

पढ़ है बहु सिमरत शास्त जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरम

न नाम रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़िया आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे।

तुम है शाड कोई अवर ना त्याऊं, जो बर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारीय है, चुन चुन सत्र हमारे मारिय है। आप हाथ दय मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दोष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता।

संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछाने, घट घट के पट पट की जाने। जब उदकर्ख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन सृष्ट सब।

तज किनी उत पूज खान बहुर राच दिनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो शंकर इकैठा।

0: सुनहार सत्रियकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी।

दासन दास कहे जन नानक जेहा तू कराहे तिहा हों करी वखियान बेसमार था अगंत अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै वाहे गुरु जी सत नाम सलोक

0: तुमरी कृपा में कोई न जाने
1: तुमरा अंत
0: तुमरी गत मित तुम्ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु जी तिने ताप निवारण हारा दुखंता सुकलास ता कहो बिघन ना को लागे जाकी प्रभा के अरदास अरदास इक्की ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वाह श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए फिर अंगत गुरु अमरदास रामदासें होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिय करनाओ निदावे ताए सब थाई होए सहाय तन तन गुरु गोबिंद सिंह साहेब महाराज जी हो सब थाई होए सहाय दसां पातशाह की जाग जो तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दा ध्यान करके बोला जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन नाम जपिया वण छकिया देख चलाई देख वाई देख के अंडिट किता तिना प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान करके बोला जी जिना सिंगा सिंगनिया ने धर्मे शीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखणिया ते चढ़े आरिया नाल चीरे गए गुरुद्वारे लई कुरबानियां कितियां तरमनी हारिया सिखी कैसा सुहासा संग निभाई तिना धी कमाई दा ध्यान करके बोलना जी पंजा तख्तां सबद गुरुद्वारियां गुरुधामा का ध्यान करके बोलना जी प्रथम है सबद खालसा जी की अदास है सबद खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहब तां तां रचिया रियायत देख देख पते बिरदगी बहज बिंदगी जी खालसा जी के बोल वाले बोलना जी सिखां दा मन निवा मत उची मत पता राखा है काल पुरख अपने पंधे सदा साई दाता जी श्री ननकाणा साहिब ते गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया खुले दर्शन ते सेवा संभाल दा दान बख्शना जीओ हे निमाणियो के मान निताणियो के तार नियोटियां की ओटनियां आसरियों के आसरे सतगुरु जीओ जागत जोत पिता साहिब तां तां गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीओ आप जिया दे चरण कमलां च अरदास बेनती जोत जी सतगुरु जीओ संध्या समय आप जिया ने कृपा कीती है रेरा साहब दे पाठ होए ने सतगुरु जीओ कीर्तन होया है कथा होई है सतगुरु जीओ अरदास है सतगुरु जीओ बाणी पढ़दियां अनेकां ही भुलां चुकां हो गया हुण ज्ञान जाण बच्चा समझ के खिमा करना सतगुरु जीओ हम भूले तुम सदा भूला हम पति तुम पति दरिया सतगुरु जीओ अरदास है संगतां आपो अपने घर बैठे गुरु घर तों लाइव कीर्तन सरण करदियां गुरु घर वास्ते बेअंत माया भेटा कर रही सतगुरु जी सारियां दी भेटा प्रवान करके सतगुरु जीओ आप जी ने प्रवान करनी है अरदास है सरगवासी पिता समत सिंह तूर दी बरसी ते उन्हां दी रूह आत्मक शांति लई अकाल पुरख अगे अरदास बेनती करदी बीबी परवीन कौर गुरु घर वास्ते 1151 डालर माया भेट करदे हन सतगुरु जीओ आप जाने समत सिंह नूं सिद्धी वास्ते अपने चरण कमलों दा वासा बख्शिश करना पिछे परिवार दे उत्ते रहमत भरिया तकना सतगुरु जी बीबी अश्विनी सिंह वाहिगुरु जी शुकराना करते हाँ गुरु घर वास्ते $51 माया भेट करें सतगुरु जी उन्हां दी अरदास प्रवान करनी चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करना अरदास है सरदार भरपूर सिंह जी सुख शांति चढ़दी कला दी अरदास करते हैं सतगुरु जी आप जाने गृह के अंदर सुख शांति चढ़दी कला दा जीवन बख्शिश करना सारे परिवार के उत्ते रहमत भरिया हथ रखना सतगुरु जी आप जाने चरण कमलों च अरदास बेनती जोधरी सतगुरु जी सारी संगतां दी अरदासां प्रवान करके गुरबाणी दा भाव उन्हां दे हिरदे अंदर वसाण दी कृपालता करनी सतगुरु जीओ हाजियां प्रवान करनी इस वेले अपना पावन हुक्मनामा बख्शिश करो ते हुक्म ते चलण दी समर्था बख्शिश करनी अखर वादा घाटा भुलचुक माफ करने कृसबद्ध कार निराश करने सही प्यारे मेल जिन मिलिया तेरा नाम चितावे नानक नाम
2: वाहिगुरु जी का खालसा।

0: आनंद चिता हर के पतीना, तिस ही को ग्रह सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन।
1: वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। कीर्तन सुहिला सुहिला, राग गौड़ी दीप की महला पहला, इको अंकार सत गुर प्रसाद। जय कर कीर्त आखिए करते काहो विचारो, तित घर गावो सुहेला। शिवरो सृजनहारो तुम गावो मेरे निर्भओ का सुहेला। हों वारी जित सुहेले सदा सुख होए रहाओ, नित नित जीड़े समालिन देखेगा देवनहार। तेरे दाना कीमत ना पवै तिसदा ते कमण सुमार, संबत साहा लिखिया मिल कर पाओ तेल। देहो सजन असी सुनिया जो हुआ साहिब श्यो मेल, कर कर एहो पहुंचा सदले नित पवन। सदन हारा सुमरी है नानक से देवन, रागा सा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश। गुर गुर एको वेसनेक बाबा, जयकर करते कीरत होए सो कर राख वडाई तोय रहाओ। विश्वे चसियां कड़ियां पैरां, तिथि वारी माहो होवा, सूरज एको रुतनेक नानक करते के केते वेस। राग तनासरी महला पहला, गगन मैथाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मने आन लो पवन चबरो करे, सगल बन राय फुलंत ज्योति। कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी रहाओ। सहस तब नैन नन नैन है तोय को, सहस मूरत नना एक तोई। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बे सहस तब गंधे विचरत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दे चानन सब मैं चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, ज्योतिष भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरन लो बितमनो, अन दिनो मोहे आए प्यासा। कृपा जल दे नानक सारन को, हो जाते तेरे नाय वासा। रागौड़ी पूर्वी मैला चौथा, काम क्रोध नगर वो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूरब लिखित लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे। रहाओ साकत हर साधना जान्या, तिन अंतर हों मैं कंडा हे। जो जो चले चुबै दुख पावै, जमकाल सह सिर डंडा हे। अर्जन हर हर नाम सुमाणे, दुख जन्म मरण पौ खंडा हे। अपना सी पुरख पाया परमेसर, बहु सोख खंड ब्रह्मंडा हे। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख उड़ बड्डा हे। जन नानक नाम दा टेकैर, नामे ही सुख मंडा हे। राग गौड़ी पूर्वी मैला पंजवा, करो बिनंते सुनो मेरे मीता। संत टहल की बेला, इहां खाट लो हर लाहा। गए बसन सुहेला औद गटै दिन सरै नारे, मन गुरमिल का सुवारे। रहाओ यो संसार विकार संसे में, तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसै जगाए पियावै एहो रसक कथा तिन जानी। जाको आए सोई ब्याह जो, गुरते मने बसेरा। निज कर मैल पाओ सुख सहजे, बौर ना होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख विदाते, सरदा मन की पूरे। नानक दास है सुख मांगे, मोको कर संतन की तूरे। अंतर जामी

नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेवय नमः अष्टपदी सिमरों सिमर सिमर सुख पावों कल कलेस तन माहे मिटावों।

की महिमा गनी न आवे। कांकी एकै दर्श तुहारू, नानकुन संग मोहे उदारू। सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभ कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जब दसै। प्रभ कै सिमरन काल फर हरै, प्रभ कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभ सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभ कै सिमरन अनदिन जागै। प्रभ कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दरगह मानी। प्रभ कै सिमरन हुए सुफला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जिन आप सिमराए, नानक ताकै लाक उपाय। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभ कै सिमरन कृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभ कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माही समाए। प्रभ जी बसै साथ की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरह से तनवंते, प्रभ को सिमरह से पतवंते। प्रभ को सिमरह से जन परवान, प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरह से बेमहताजे, प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरह से सुखवासी, प्रभ को सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभ को सिमरह से पर उपकारी, प्रभ को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभ को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभ को सिमरह तिन सुख बिहावै। प्रभ को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरह तिन अनद कनेरे, प्रभ को सिमरह बसह हर नेरे। संत कृपा ते अंधे।

प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी, प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांत न पार, सिमरह से जन जिनको प्रभ मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेत उपाय, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंट जाते, हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन की सगला कारा, हर सिमरन में आप निरंकारा, कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन।

नंद गुबारा हरका नाम संग उजियारा जह पंथ तेरा को न सियानू हरका नाम तैनाल पछानू जय महा प्यान तप्त बहु कामु है हर के नाम की तुम ऊपर छामु जात्रिका मन तुझ आकर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है भगत जना की बरत नाम संत जना के मन विश्राम हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उदरे जन कूट हर जस करत संत दिन रात हर हर औकद साधक मात।

भुगत हर कै नाम जन कौ तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का पर न भंग हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कछ नाहे वियोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजै हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर धन जन कुआ प्रभ दीना हर हर जन कै उठ सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पहर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जात्यो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुर्त सब नसै संत का संग विट भागी पाई संत की सेवा नाम ते आई नाम तुल कछ अवर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमूल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म त्रम क्रिया सगल त्याग वन मध्य फिरया अनेक प्रकार की ये बहु जतना पुण्य दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्तने करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास तपि सर थी वै अगन माय उमत प्राण कनिकसव है वर भूम दान न्यौली कर्म करे बहुआसन जैन मार्ग संजमत साधन निमक निमक कर शरीर कटावे ताओ पी होमे मैल न जावे हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर दे छुट्टै गर्व गुमान मन ते उठै सोच करे दिन सर रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरै जल तो वै बहु दे अनीत शुद्ध कावे काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहमूच बहुत सियाण जम का भव व्यापै अनेक जतन कर त्रसन्ना त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझै कोट उपाव दरगह नि सिजै झूठ सुनायु पयाल मुहि व्यापै माया जाल अवर करतू सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे सा संगे होमै छूरे जे को जन मरण ते डरे साजना की सरनी परे जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख में पुरख प्रधान साध संग जाका मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सो गणिय सब ते ऊंचा जाका मनो सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख सगल श्रेष्ठ साजना सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप नहीं लेपा निर्धन को धन।

कालो अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिंतु सासुआर सिगारिया गर्भगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध पर जुबन भोजन सुख सूद बिरद पया उपर साख सैन मुख पयाओ बैठ को दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बुझै बख्श ले हो तो नानक सीजै जे प्रसाद तारू पर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करने तरसना तिसे त्यागवर संरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नान काट लिहु प्रव्यापे आदंत जो रखन हार तिस्यो प्रीत न करे गवार जाकी सेवा नव निद पावै तास्यो मूड़ा मन नहिलावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसे बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौड़ी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंध कूप में पतत बिकराल नानक काढ़ ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पे कंतर मल माया छप सुनाई कछ करै छपाया बाहर

कर गहले हो ओढ़ निभावे। कहा बुझारत बुझै डूरा निष्कय तो समझै पूरा। कहा विष्ण पद गावै गुंग जतन करे तो पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं हो तू हाँ उस गवन। करतार करुणा में दीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाय सुहावै न चीत जो बैराई ता स्यो प्रीत। बलुआ के गृह पीतर बसै अनंत केल माया रंग रसै। दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह। हे आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहो अपन कर कर्म। तू ठाकुर तुम पै अरदास जीव पिंड सब तेरी रास। तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख कनेरे। कोई न जाने तुमरा अंत उच्चे ते उच्चा भगवंत। सगल समग्री तुमरे सूत्र तारी तुम ते हुए सुआज्ञाकारी। तुमरी गातमित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी। श्लोक देन हार प्रभ छूट कै लागह आन सुवाई। नानक कहू न सी जई बिन नावै पत जाए अष्टपदी। दस वस्तु ले पाछ पावै एक वस्त कारण बिकोट गवावै। एक भी न दे दस भी हिर ले तो मूड़ा कहो कहा करे। जिष्ठा कुरस्यो ना ही चारा ताको की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा परम मीठा सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया। अगंत साव अपनी देरास खात पीत बरतैन दुलास। अपनी अमान कछ बहुर साहु ले अज्ञानी मन रोष करे। अपनी प्रति ताप ही होवे बहुर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्त से आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा मन मत है। उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल। अनिक भांत माया के हेत सर पर होवत जान अनेत। बिर की छाया स्यो रंग लावे ओ बिन सह मन पछतावे। जो दिशा सो चलनहार लपट रो तय अंध अंधार। बटाऊ स्यो जो लावे नेहे ताको हाथ नया वै के। मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर कृपा नानका भले लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाया मिथ्या हो मैं ममता माया। मिथ्या राजोवन धन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस्त वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। मिथ्या ध्रोम अभिमान मिथ्या पशु पर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है। मिथ्या तनि पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सफय सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की आर जा साच बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन अंध मुकावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन वृता बिहाय मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोबिंद भजन बिन वृते सब काम ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो हर नाओ नानक ताके बल बल जाओ। रहत अवर कछवर कमावत मनी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु पर बीन बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन में मरे। जिसके अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरह संसार। जो तुम पानी तिन प्रभ जाता नानक उनजन चरण पराता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया या पैमाने। आप है आप करत नबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत सबक जाने आत्म की रहत। जिस पावै तिस लय लड़ लाए थान तनंतर रहा सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहंग मेव। नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।
जे प्रसाद छत्ति अमृत खाहि तिस ठाकुर को रख मन माहि जे प्रसाद सुगंध तन लावै तिसको सिमरत परम गत पावै जे प्रसाद बसै सुख मंदर तिसै तिहाई सदा मने अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना आठ पहर सिमरहु तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई त्यावन जोग जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै तिसै त्या कतवर लुभावै जे प्रसाद सुख से सुविजय मन आठ पहर ताका जस गा विजय जे प्रसाद तु सब को मान मुक्ता को जस रसन बखाने जे प्रसाद तिरु रहता धर्म मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म प्रभ जी जप दर गह मान पावे नानक पत छेती घर जावै जे प्रसाद आरु कंचन देही दिवलाव तिस राम स्नेही जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके जे प्रसाद तुझको न पहुँचे मन साथ साथ सिमरहु प्रभु उचे जे प्रसाद पाए दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करे जे प्रसाद भूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय जे प्रसाद अश्व हस्त सवारी मन तिस प्रभ कौ कबहु न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत सह त्याई तिसह त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै जे प्रसाद करह पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ को सा सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरव सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक जस कहै जे प्रसाद सुनह कर्ण नाद जे प्रसाद पे कह विस्माद जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजी बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है सा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे

तिसे जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावें साच, रे मन मेरे तू ता सुराच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते हुए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सुप्रसन्न बसै मन सोए, प्रभु दया ते मत उत्तम होए। सर्व निदान प्रभु तेरी मया, पू कछु न किन्हु लया। जित जित लावो तित लगै हर नाथ, नानक किन कह कछु न हाथ। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सुमुक्ता हुए। सुन मीता नानक बिनवंता, साजना की अचर्ज कथा अष्टपदी। साधक संग मुखू जल होत, साध संग बल सगली खोत। साधक संग मिटै अभिमान, साधक संग प्रगटै सुज्ञान। साधक संग बुझै प्रभु नीरा, साध संग सब होत नबेरा। साधक संग पाए नाम रतन, साधक संग एक ऊपर जतन। साधकी महिमा बरनै कौन पुरानी, नानक साधकी शोभा प्रभ माहि समानी। साधक संग अगोचर मिलै, साधक संग सदा प्रफुल्लै। साधक संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होइ सब की रेनु, साधक संग मनोहर बैनु। साधक संग न कतहु तावै, साध संग स्थित मन पावै। साधक संग माया ते भिन्नु, साध संग नानक प्रभु सो प्रसन्नु। साध संग दुश्मन समीत, साधु

ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣੇ ਆਈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਬਹੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਵਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨੁ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕੁਟੁੰਬ ਨਿਸ਼ਟਾਰੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋਭਾ ਸੁਰ ਦੇਵਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਲਾਇਨੁ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨੁ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਘਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੁਖਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਛੁਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਉਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲੱਗੈ ਪ੍ਰਮੀਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਘਟ ਘਟ ਡੀਠਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਭੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿੱਟੇ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੇ ਸੰਜੋਗ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਦ ਨ ਜਾਣੈ ਜੀਤਾ ਸੁਣੈ ਤੀਤਾ ਬਖਿਆਨੈ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸੁਧਾ ਬੇਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੇਦ ਨ ਭਾਈ ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨ ਪੇਖੈ ਕਿਸੁ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਕੇ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲਾ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੌ ਸੋਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲਪਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜਿਉ ਬਸੁਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹੈ ਗੁਨਾਉ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਾਰੂ ਪਰ ਆਕਾਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਅਭਿਮਾਨੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉੱਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਮਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮ ਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਜੁਗਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਧਿਆਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸੁ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਭਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭਸੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇੱਕ ਸੰਗ ਹੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਰਸ਼ ਬਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਵਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਦਾਖਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬ ਕਾ ਠਾਕੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਮਿਤ ਕੌਣ ਬਖਾਨੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੰਥ ਨ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਭ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਕਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ
ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगलाकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी। श्लोक उरता रह जो अंतर नाम, सर्व में पिक है भगवान, निमक निमक ठाकुर नमस्कार है, नानको अपर सगल निस्तार है। अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, पर त्रै रूप न पिक है नित्र, साध के टहल संसंग हेत, करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुर प्रसाद विख्या पर हरे, मन की बासना मन ते टरे, इंद्री जित पंच दोग ते रहत, नान कोट मध्य को ऐसा वर्ष, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, विष्णु की माया ते विभिन्न, कर्म करत हो वह नहीं कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे, केवल भगत कीर्तन संग्राचे, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानको वैष्णो परम गत पावे, भगवती भगवंत भगत का रंग, सगल त्याग दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला परम, कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सासंग पापा मलक होवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तनेर पै विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नान कैसा भगवती भगवंत को पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म में सोतै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित के उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जो न आवै, वेद प्राण सिमृत बूझै मूल, सुख मैं जानै स्थूल, चौवर्ण को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवर्ण मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए, सासंग पावै जन कोए, कर कृपांतर उतारै, पस प्रेत मुक्त पात्र को तारै, सर्व रूप का उकत नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सतराम दास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै परवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संगा तुम उदास, ऐसी जुगत नानक राम दास, प्रभ की आज्ञा तुम हितावै, जीवन मुख सो कहावै, तैसा हर्ख तैसा उसोग, सदानंद तै नहीं बियोग, तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी, तैसा मान तैसा बिमानु, तैसा रंग तैसा राजान, जो वरताए साई जुगत, नानक को पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित कर राखै तैसा तिन्नाओ, आपे करण करावण जोग, प्रभावै सोई पुन होग, पसरिव आप हंत तरंग, लखे न जाहि पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल। श्लोक उस्तद करै अनेक जन अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहु विधनिक प्रकार। अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थवासी, कई कोट बन ब्रह्म उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीश्वर होते, कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है, कई कोट नवतन नाम त्याव है, नान करते कंत न पाव है, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपण कठोर, कई कोट अपेगात्म निकोर, कई कोट पर दर्प को हिर है, कई कोट पर दुख न कर है, कई कोट माया श्रमाहे, कई कोट पर देश प्रमाहे, जिद जिद लाव तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर को पाए, कई कोट पाथर वृख निप जाए, कई कोट पवन पानी वै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट सस्यर सूर नखेतर, कई कोट देवदान इंद्र सिर छतर, सगल समग्री अपने सुतार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कई कोट राजस्ताम सातक, कई कोट वेद प्राण सिमृत अर्शास्त्र,
कई कोट की रतन समुद्र, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट की चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे, कई कोट जखि नर पिशाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा, सब ते नेर सबूते दूर, नानका अपलिप्त रहा भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म जीव मर, कई कोट बोजूनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जय जय पाणा तय तय राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ को खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रप्यास, तिन को मिल्यो प्रभ विनाश, कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको हुए अब सुप्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मंड, कई कोट हुए अवतार, कई जूत किन्नो विस्तार, कई बार पसरे उपासार, सदा सदा के कंकार, कई कोट किन्ने बपात, प्रभ ते हुए प्रमा सुमाता, कंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कई कोट पार ब्रह्म के दास, तिन हुवता तम प्रगास, कई कोट तत् के बेती सदा निहारे को नित्रे, कई कोट नाम रस पीव है, अमर पै सत सद ही जीव है, कई कोट नाम गुण गावे, तुमरा सुख सह सुमावे, अपने जन को साथ साथ सुमारी, नानक को परमेश्वर के प्यारे, श्लोक करण कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नान किस बलिहार ने, जल तल मही अल सोए, अष्टपदी करण करावन करने जोग, जो तिस पावे सोई होग, किन में तापो तापन हारा, अंत ने किच पारा वारा, हुक्मे धार धार रहावे, हुक्मे उपजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊच नीच व्यवहार, हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देखे अपनी वडियाई, नानक सब में रहा समाई, प्रभाव है मानुख गत पावे, प्रभाव है ता पात्र त्रावे, प्रभाव है बिन सास तेरा कै, प्रभाव है ता हर गुण पाखे, प्रभाव है ता पत तुधार है, आप करे अपन विचार है, दूह सुरिया काप स्वामी, खिल है बिकसे अंतर जामी, जो भाव है सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानुक थे क्या हो आवे, जो तिस भाव है सोई करावे, इसके हाथ होए ता सब किच ले, जो तिस भाव है सोई करे, अनजानत भिखिया मैं रचे, जे जानता अपना बचे, पर मैं भूला दह दिस्तावे, निमक माए चार कुंट फिर आवे, कर कृपा जिस अपनी भग दे, नानक ते जन नाम मिले, खिन मैं नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगटावे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा न गने जगदीश, जियो पिंड सब तिस की रास, कट कट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बनता बनाई, नानक जीवे दिख बढ़ाई, इसका वरना ही सहात, करण करावन सर्व को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, जो तिस भावे सोई फुन थियो, कबू ऊच नीच में बसे, कबू सोग हर खरंग हसे, कबू निंद चिंद व्यवहार, कबू बकाश भयाल, कबू बेता ब्रह्म विचार, नानका मिलावनहार, कबू नृत करे बहुपात, कबू सोए रहे दिन रात, कबू माँ क्रोध विकराल, कबू सर्व की हो तरवार, कबू हुए वह बड़ राजा, कबू पेखारी नीच का साजा, कबू अपकीरत में आवे, कबू पला पला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुरु प्रसाद नानक सच कहे, कबू हुए पंडित करे बख्यान, कबू मून धारी लावे ध्यान, कबू तट तीर्थ स्नान, कबू सिद्ध साधिक मुख ज्ञान, कबू पीठ हस्त पतंग हुए जिया, निक जुन पर मैं परमिया, नाना रूप जो स्वागी दिखावे, जो प्रभावे तिवै निचावे, जो तिस भावे सोई हुए, नानक दूचा वर न कोए, कबू सास संगत पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मंथन अमृत एक रंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जले आए कटाना, ज्यों ज्योति संग जो समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, श्लोक सुखी बसै मस्कीनी आया पनिवार तले, बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसके अंतराज अभिमान, सो नरक पाती होवत स्वान, जो जाने में जो बनवंत, सो होवत विष्टा का जंत, आपस को करवंत कहावे, जन्म मरै बोजुन परमावे, धन भूमिका जो करे गुमान,
सुमूरकंदा ज्ञान कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानकी है मुक्ता गै सुख पावे धनवंता हुए कर गर्भावे तिन समान कर संग न जावे बोलस कर मान खूपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाए पसमंत किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय तिस करे खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान ओट कर्म करे हो तारी श्रम पावे सगले बिरतारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक स्वर्ग फिर अवतार अनक जतन करा तुम नहीं द्रवे हर दरगह को कैसे गवे आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा कामन हुए कव नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जाबे जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चलना ही चीत जब लग मुंह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटे गुरु प्रसाद नानक हो छूटे सहस खटे लग उठता वे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनिक भोग विख्या के करे न तृप्ता वै खप खप मरे बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ वृथे सबका जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़भागी किसे प्राप्त हुए करण करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसी दृष्ट करे तैसा हुए आपे आप प्रभ सोए जो किचके नु स्वप्न रंग सबते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे बबे का पहे का पह अनेक मरन बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा सुमाए आप उपदेश समझे आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते पिन कहो किछ हुए थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौत करे रंग आपार मन मया मन अपने माही नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरु प्रसाद किने वकियानी सच सच सच सब कीना कोट मदे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बखियानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सूजन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन हार जा कटै संत कै दुखन जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए संत कै दुखन नरक में पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखै न कोए संत कै दुखन थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संग निंदक भी तरह संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग जो लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिग जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा में जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन ते सब जाए संत कै दुखन नीच निचाए संत दुखी का था को नाए नान संत पावे तो भीगत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक इन टिकन न पाई संत का निंदक माह त्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखी आर दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत के निंदा दुख में दुख नानक संत पावे तो उसका पी हुए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसै का निमित्त संत के दुखी को डां लागे संत के दुखी को सब त्याग संत का दुखी मां अहंकारी संत का दुखी सदा भिकारी संत का दुखी जन्म में मरे संत की दुख न सुख ते टरै संत के दुखी को ना ही ठाउ नानु संत भावै तां लय मिलाए संत का दुखी अदबीज ते टूटै संत का दुखी कितै काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान प्रभाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किच नाहे अपन भी जापे ही काहे संत के दुखी कवर न राखन हार नानक संत पावे तां लय उबार संत का दुखी ओं बिल लाए ज्यो जल विहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव केंद्र नहीं त्रापै संत का दुखी छुट्टै केला ज्यो बुआड़ तिलकेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत
संत का दुखी सद मिथिया कहत किरत निंदक का तुर ही पाया नानक ज्योत भाव है सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दरगह मिला सजाए संत का दुखी सदा सहकाई है संत का दुखी न मरे न जीवाई है संत के दुखी की पूजा न आसा संत का दुखी उठचल निराशा संत का दुख न तृष्ट कोई जैसा भाव है तैसा कोई हुए पया किरत न मिट्ट कोई नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्त करो दिन रात सहत्या हो श्वास गिरास सब कछ वरता है तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना के लाभ करने हार दूसरो कौन कह विचार जिसनु कृपा करे तिसाप नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजो सियान सुरजनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख भरम भो जाय अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान देवन को एक है भगवान जिसका दिया रहे अघाय बौ न तृष्ण लागे आये मार रखे कुआ मानु कै किसना ही हार तिसका हुकम बूझ सुख होए तिसका नाम रखंड परोए सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्त मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसनामृत पीयू सदा सुहेला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग सत्संग बिन सह सब संग चरण चलो मार गोविंद मिट्टै पाप जपिए हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दरगह नानकू जिल मत्था बड़भागी ते जन जग माही सदा सदार के गुण गाये राम नाम जो कर विचार से तन मंत गणि संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एक एक एक पचाने तुत की सो जी जाने नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिने निरंजन जान्या गुर प्रसाद अपन आप सुजय किसकी जानो तृष्णा बुझे सार संग हर हर जस कहत सर्व रोग त्योहर जन रहत अंदिन कीर्तन केवल बख्याल गृष्ट में सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटी है जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक किसे न लागे दुख जिसको हर ब्रह्मंच ते आवे सो संत सुहेला नहीं दुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो सेवक को किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोधत सोधत सोधत सीजिया गुरु प्रसाद तब सब उजिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सुखम सोय स्थूल न कि जन्मे न किस मरे अपन चलता भी करे आवन जावन दृष्टन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल में आप अनेक युग त्रचताप थाप विनाशी नाही किच कांड धारण तारे हो ब्रह्मांड अलख अपे पुरख प्रताप आप जपाए त नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुबावंत सगल संसार उदरै तिन मंत प्रभु के सेवक सगल उदाहरण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेले कृपाल गुर का सब जपै निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनु कृपा करह बड़ भागे नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करमान जो किछ करे सुप्रभ कह रंग सदा सदा बसै हर संग सह सुभाय हुए सो हुए करने हर पछाणे सोए प्रभ का किया जनमीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस त्यो बजे तिस माय समाय सुख निदान नु बने आया।

सदि टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस्ते बिरता कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न हुए जिसो प्राणी लुच्छै कोय तिस बिन नाही तेरा किच काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होय नाही मुह है रब की जो सगल कट सो है तनवंता हो क्या को गर्भ है जा सब किस तिसका दी है दर्भ है अत सूरा जे को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता है जे को हुए वह दातार तिस देन हार जाने गावार जिस गुरु प्रसाद टूटै हो रोग नानक सूजन सदा अरोग ज्यो मंदिर को था मैं थमन त्यो गुरु का शब्द मने अस्थमन ज्यो पाखा नाव चढ़ तरै प्राणी गुरु चरण लगत निस्तर है जो अंधकार दीपक प्रगास गुरु दर्शन देख मन हुए विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावे त्यों संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर काहे बिललाइय पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देव नहार अवर त्याग तू तिसै चितार जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रसलोभी पतंग राम नाम जप हृदय माहि नानक पद सिद्धि कर जाहि जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज मान लेहु मन भूल राम नाम हृदय में तूल लाद के संतै संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल तन तन कह सब कोय भुखु जल हर दर गै सोए हो वापार विरला वापार है नानक ताके सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पी वर प्रसाद को अपना जियो साध के दूर करो इस नहान साध ऊपर जाइये कुर्बान साध सेवा विट भागी पाइये साध संघार कीर्तन गाइये अनेक विघन ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे उठ गई संतै दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल नहार भूखे को देवता दार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस तिसका उकरण है जोग तिस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थी आ जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रचीत भगत भगत सुनिया त्यो लोए जाके हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमुख है तो सच ही सचा आकार सच वर्ता सचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन।

सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन मेराख मानो की तू प्री त्याग तिस्ते परे नाही किछ कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बसंत सा तेरे की चरनी पाओ नानक के मन ए नाओ मनसा पूर्ण सरना जोग जो कृपाया सोई हो हरन परन जा का नेत्र पूर इसका मंत्र ना जाने हो अंधरू मंगल सर जाके सर्वसोक सुनिए करता के राज में राज योग में जोगी ताब में बिसर कृष में भोगी त्याए त्याए भगते सुख पाया नान तिरका किन्यंत न पाया जाकी लीला कीमत नाही सगल देव हारे हो गाये पिता का जन्म के जाने पूत सगल प्रोई आपने सूत सुमत ज्ञान त्याण जन दे जनदास नाम त्यावे से ते गुण में जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊंच नीच तिसके स्थान जैसा जनावे ऐसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पेह करेक रंग नाना बिलकी नो विस्तार प्रणसी एकंकार नाना चलत करे खनमाए पूर्व पूर्व सौठाए नाना बिलकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवे नान करनाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद प्राण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरियासा पवन नाम के संग उजरे सुन सरुण कर कृपा इस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सोजन गस पाए अरूप सत जा का सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतू सत सत जा की बाणी सात पुरख सा महेश बाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बजाए ते सफली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश साते जन जागिर प्रवेश सत निर पूजे जे कोए नाम जो ताएंगत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मितगत जिसकी सिट सो करने हार अवर नभूल करत विचार करते की मित ना जाने किया नानक ज्योतिष पावे सो वर्तिया बिस्मण बिस्म पै बिस्माद जिन बुझिया ते साया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के वचन पदार्थ लय ओए दाते दो काटन हार जा कर संग अरे संसार
जन का सेवक सोवड़ पाकी, जन के संग एक लगी गुण गोविंद कीर्तन गावे, गुर प्रसाद नानक पल पावे श्लोक, आद सच जगाद सच है पे सच नाड़ कोसी पै सच अष्टपदी। चरण सत सत पर सुनहार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखण हार, नाम सत सत त्यावनार, आप सत सत सब तारी, आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सुरत सत साजा सुनता, बूजन हार को सा सब हुए, नानक सत सत प्रसोए, सात स्वरूप हृदय जन मानिया, कर्ण कराव तेन मूल पछाणिया, जाके हृदय विश्वास प्रवाया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया, भय ते निरपो होए बसाना, जिस त्योजिया तिस माए समाना, बस्त मैले बस्त गड़ाई, ताको पहनना कहना जाई, बूझे बूझण हार विवेक, नारायण बड़े नारकेक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्भरीत, ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम किरण, सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे नकारा, सो सेवक जय दया प्रतारे, नान सो सेवक सा सा सवारे, अपने जन का पर्दा ढाके, अपने सेवक की सर पर रखे, अपने दास को दे उड़ाई, अपने सेवक को नाव जपाई, अपने सेवक की आपत रखे, ताकि गत में कोई न लगे, प्रभु के सेवक को ना पहुंचे, प्रभु के सेवक ऊचे ऊचे, जो पर अपनी सेवा लाया, नान सो सेवक वैलिख पाया, नेकी कीरी मैं कर रखे, पासम करे लश्कर कोट लाके, जिसका साथ न काढ़ते आप, ताको राख देख रात, मार जतन करत बो पात, जिसके करतो बिरते जात, मारे न रखे अवर न कोई, सर्व जिया का राखा।

और नाम का संग, नाम रस जो जा तृप्ताने मंथन नामे नाम स्माने उठ बैठ सोवत नाम कहो नानक जन की सरकाम। बोलो जस जीपा दे रात प्रभ अपने जन की नीदात। करे भगत आत्म कह जाए प्रभ अपने सिउ रहे समाए। जो हुआ हो सो जाने प्रभ अपने का हुक्म पिछाने। जिसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण कह एक न जानो। आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक से ही जल पूरे। मन मेरे तिन की उठ ले मन तने अपना तिन जन दे। जिन जने अपना प्रभु पछाता सोजन सर्व थोक का दाता। तिस की शरण सर्व सुख पावे तिस के दर्श सा पाप मिटावे। अवर सियाण सगली छाड तिस जन की तू सेवा लाग। आवण जान ओ भी तेरा नानक तिस जन के उजो सद पैरा। श्लोक सात पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाओ तिस कै संग सिख उदरे। नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुर सिक्की करै प्रतपाल। सेवक गुर सदा दयाल सिक्की गुर दुरमत मल हिरै गुर वचनी हर नाम चरै। सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पल सुवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रहै गुर की आज्ञा मन में सह। आप उसको कर कछ न जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै। मन बिचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्य रास। सेवा करत होए नहीं कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। अपनी कृपा जिस आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन मानै सो सेवक परमेश्वर की गत जानै। सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ अनिक बार गुर को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम। सह सियानप लया न जाइए नानक कैसा गुरु बिडभागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दर कह गवे। सुनकर बचन करन आघाने मन संतोखा तुम पतियाने। पूरा गुर अखियो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पे कह हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पाव है तिस लय मिलाए। जिहबा एक उस्त तन एक सतपुरख पूर्ण भवेक। काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम गोचर प्रभ निर्वाणी। निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई। अनिक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमर है। सद बलिहारी सतगुरे अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने। यो अरस पावै जन कुए अमृत पीवै अमर सो हुए। उस पुरख का नाही कदे विनाश सुजा कै मन प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक को दे। मुह माया कै संग न ले मन में रखे हर हर एक। अंधकार दीपक परगासे नानक परमु दुख तहते नासे। तप्त माहे ठाड वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई। जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेशे। पाओ चुका निरपाओ हुए बसे सगल व्याध मनते खै नसे। जिसका सातिन कृपा तारी सा संग जपना मुरारी। थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जसरव।

निर्गुण आप सरगुण पियो ही कला धार जिन सगली मोही अपने चत प्रभा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्व निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगा साध कै संग रच रचनाए अपनी कल धारी अनिक बार नानक बलिहारी श्लोक

चारु अष्टपदी संत जना मिल करु विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाव समीत विसारहु चरण कमल हृदय में उरतारु कर्ण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत एहो तन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस रखु मन माही सर्व रोग नानक मिट जाहि जिस तन को चार कुंट उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाचे मीत छो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह पली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनिको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अब कद लाए शर्म निदान में हर नाम निदान जप नानक दर गय परवान मन प्रबुद्ध हर कह नाई दाद स्थावता बैठाई ताको बिघन लागे कोई जा कह हृदय वसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाऊ सिमर सिमर सदा सुख पाऊ भव बिन सह पूर्ण हुए आस भगत पाए आत्म परगा तित कर जाए विषय विनाशी कौ नान काटी जम फासी तत् विचार कह जन साचा जन मरै सो काचो काचा आवागमन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव यो रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनिक उपाव न छूटन हारे सिमरत शास्त्र वेद विचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंचत नानक फल पाए संग न चाल स्थिरै तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सुत मीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ सवारी झूठा डंभ झूठ पासारी जिंदी तिस बुझै न बिगाना न विसार नानक पछताना गुर की मातु लेहे आने भगत बिना बहु डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखो मन माहे जन्म जन्म के किल विक जाहे आप जपो अवरा नाम जपावो सुनत कैत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाय नानु गुण गाओ तिर उतर समैल बिन सजाए हो मैं विक फैल ओहे अचिंत बसै सुख नालु सास ग्रह सर नाम संभालु चार सियान सगली मना सास संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो विहार यहाँ सुख दर गै जयकार सर निरंतर एको दे कौ नानक जाके मस्त कलेक एको जाप एको साला एक सिमर एको मन आहे किसके गुण गाओ अनंत मंथन जाप एक भगवंत एको एक एक हर आप पूर्ण पूरे प्रव्याप अनिक विस्तार एक दे भय करात प्राचित कहे मंत्र निरंतर एक प्रव्रता गुरु प्रसाद नानक इक जाता श्लोक व्यर्थ व्यर्थ प्रभ आया परया तो शरणाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रवदान कर कृपा देवो हर नाम साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभु के गुण गावो साथ साथ प्रभु तुम्हें त्यावो चरण कमल ज्यो लागे प्रीत भगत करूं प्रभु की नित नीत एको टेको आधार नानक मांगे नाम प्रभु सार प्रभु की दृष्टमा सुख होए अरस पावे बिरला कोय जिन चाख्या से जन तृप्तानी पूर्ण पुरख नहीं डोला नहीं सुपार परे प्रेम रस रंग पूजा चाव साध कै संग परे शरणान सब त्याग अंतर प्रकाश अंधि निविलाग बड़भागी जपिया प्रभ सोए नानक नाम रत्ते सुख होए सेवकी मनसा पूरी पई सदगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभु होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक जन भया जन मरण दुख प्रम गया इच पुन्नी श्रद्धा सा पूरी रव रया सत्संग हजूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किस दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मै राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिकसरै जे बिकते काटै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरु पूरे तथे है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एक आमान त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो हवरै नाम जपावो भगत पाए थरिय संसार बिन भक्ति तन हो सी चार सर्व कल्याण सुख निध नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नासु नानक नाम जपो गुणतासु उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर ही सुहाओ
नित्रोपेक दर्शुक हुए मन विकसय सा चरण तोय भग जना कह मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बदी जय करमया गुरु प्रसाद नाम जप लया था कृपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाय प्रभु संदीन दयाल भगत वचल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आज गुरु कारण करतार भग जना के प्राण धार जो जो जपै सो हुए पुनीत भगत भाए लावे मनहित हम निर्गुण यार नीच जान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व कुंड मुक्त मुख पाए एक निम करके गुण गायन करा भोग बढ़े आई हर के नाम की कथा मन पाई वो भोजन का पर संगीत रसना जपती हर हर नीत भली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत सा संप्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सर्व सुख नानक प्रगास लोक सर्व गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानकाया पे ही फिर जाप अष्टपदी जब कार्यो कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाध तब बैर विरुद्ध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक सो कहो किसे व्यापत जब अपन आपा पार ब्रह्म तमु का किसूवत भरम अपन केला वर्ती जानन करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब अंधरगम पार तब नरक सुर को कौन उतारू जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जो तरह तब कवन निडर कवन कत डर अपन चलता करने हार नानक ठाकुर गम पार अविनाशी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को कहा बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की तास कहो किस होए जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाधे अपन आप आपी चर जा नानक अपन रूप आपी पर जब यह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय छल छिद्र लगत को कीश जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भू कवन तृप्तावै करन करावन करने हारू नान करते का नाही सुमारू जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद कतिव कहा कोचीन जब अपन आप पुर धारै तू सगन सगन कहा विचार है जय अपन उचापन अपनेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानु आप जया छल छेद भेद समाया उहा किसे व्यापत माया पसकुआ पया देश त्यो गुण का नाही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लाग चिंता जय अपन आपापति आरा तय कौन कतय कौन सुन नहारा बहु बेअंत उचते ऊंचा नानका पसकुआ पह पहुंचा जया पृथ्वी पर पंच कार त्यो गुण में किन्नो विस्तार पाप उनत पई कहावत को नरको सुर वंशावताल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार की ओ बखियान आपन खेला कर दिख खेल संकोच है तू नानक कह जय अभिगत भगत है आप जय पसरे पासार संत प्रताप दुह पाक आया पे तनी उनकी शोभा उन्हू बनी आप है कौत कर आनंद चूज आप है रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिसे अपन ना इलावै जिस पावै तिस खेल खिलावै बेसुमार तहा गंते अतुलै ज्यों

संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना के हृदय सब धर्म, संत जना सुने सब बचन, सर्वव्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस की ये रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख माने, करन करावन हार प्रभु जाने, अंतर बसे बाहर पियो ही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभु ते सगली उत्पत, तिस पावै ता करे विस्तार, तिस पावै ता एकंकार, अनिकला लखी नह जाए, जिस पावै तिस लय मिलाए, कवन निकट

सर्वभूतावर्तारा सर्वनैनापेकनहारा सगल समग्री जाका तना आपन जस आप ही सुना आवन जाने खेल बनाया आज्ञाकारी की निमाया सब कह मद लिप्त रहे जो किछ कहना सुआपे कहे आज्ञा आवे आज्ञा जाए नानक जा भावे ता ले समाए इसते हुए सुना ही बुरा और कहो कि नै कछ करा भला कर तू तत निकी आपे जाने अपने जी की आप साचधारी सब साच उत्पोत अपन संग्राजता की गच मिच कही न जाए दूसर हुए ता सो जी पाए तिसका किया सब परवान गुर प्रसाद नानक हो जान जो जाने तिसदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए हो तनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुख जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत राया जन आवन का इह सुआऊ जन कै संचित आवै नाऊ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाऊ नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सास गगन सागर तरो हर तन के पर ले हो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार केम कुशल सहजानंद सासंग भज परमानंद नरक निवार उधारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चितो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी कहे है आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफल ताका संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द नाहत वाजय सुन सुन अनंत करे प्रभु का जय प्रगटे गोपाल महांत कै माते नानक उदरे तिन कै साथे शरण जोग सुन शरण ही आए कर कृपा प्रभा मिलाए मिट गए बैर भय सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरुदेव पूर्ण होय सेव की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निबही खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहु संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुख मनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण हुए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर न हुए आवन जान हर धन काट चले जन सोए नानक जिस प्राप्त हुए खेम शांत रिद नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कैमर सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम वचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता।

बिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध सा संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाके मस्त कर्म प्रपाई साध सर नानक ते आई जिस मन बसै सुने लाई परीत तिस जन आवे हर प्रवचीत जन्म मरण ता का दुख निवारै दुर्लभ दे तत्काल उधारै निर्मल शोभा अमृता की बानी एक नाम मन माहि समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मलता के कर्म सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमनी सब ते उच्चता की शोभा बनी नानक के गुण नाम सुखमनी सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अकर्ता पुरख निरपौ निरवैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच सोचै सोच ना होवई जे सोची लख वार चुपै चुप ना होवई जे लाए रहाले अवतार भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाणपां लख होहे तां इक ना चलै नाल केव सचियारा होइयै केव कूड़ै तुटै पाल हुकम रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मे उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईया है इक ना हुक्मे बख्शीस एक हुक्मे सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हमै कहै ना कोए गावै को ताण होवै किसै ताण गावै को दात जानै निसाण गावै को गुण वडियाइया चार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खे गावै को जी लै फिर दे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथना कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटी कोट कोट देंदा दे लेंदे थक पाहे जुगा जुगंत्र खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विगसै वे परवाह साचा साहिब साच नाए पाखिया पाओ अपार आख मंगह देह देह दात करे दातार फेर के अगै रखिया जित दिसै दरबार मोहों के बोलन बोलिया जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख दुआर नानक इवै जानिया सब आपे सचियार थापिया न जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गावियै गुणी निधान गावियै सुनियै मन रखियै पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नादं गुरमुख वेदं गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हौं जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीरथ नावा जे तिस पावा विण पाणे के नाए करी जेती सिरठ उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जागले जे तिस नदर ना आवई ता वात ना पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतया गुण दे तेहा कोए ना सुजई जे तिस गुण कोए करे सुनै सिद्ध पीर सुरनाथ सुनै धरत धवल आकाश सुनै दीप लो पाताल सुनै पोहे न सकै काल नानक भगतां सदा विगास सुनै दुख पाप का नास सुनै ईसर बर्मा इंद सुनै मुख सालाहन मंद
सुनाए जुग जुगत तन भेद, सुनाए शास्त्र सिमरत वेद, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सात संतोख ज्ञान, सुनाए अठ सठ का इसनान, सुनाए पढ़ पढ़ पावै मान, सुनाए लागै सहज ध्यान, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, सुनाए सारा गुणा की गाह, सुनाए सेख पीर पातशाह, सुनाए अंधे पावै राह, सुनाए हाथ होवै असगाह, नानक भगता सदा विगास, सुनाए दुख पाप का नास, मन्ने की गत कही न जाए, जे को कह पिछे पछुताए, कागद कलम न लिखन हार, मन्ने का बह करन विचार, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध, मन्नै मोह चोटा ना खाए, मन्नै जम कै साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै मार्ग ठाक न पाए, मन्नै पथ स्यों प्रगट जाए, मन्नै मग न चले पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, मन्नै है पावै मुख द्वार, मन्नै परवारै साधार, मन्नै तरै तारी गुर सिखो, मन्नै नानक पवै ना भेखो, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, पंच प्रवान पंच प्रधान, पंचे पावह दरगह मान, पंचा सो है दर राजान, पंचा का गुर एक त्यान, जे को कह कर विचार, करते कह करण नाही सुमार, तौल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रखिया जिन सूत, जे को बुझै होवै सचियार, तवलै उपर केता पार, धरती होर पर होर होर, तिस ते पार तलै कवन जोर, जी जात रंगा के नाव, सबना लिखिया वुड़ी कलाम, एहो लेखा लिख जाने कोए, लेखा लिखिया केता होए, केता तान सवाले हो रूप, केती दात जाने कौन कूत, कीता पसाओ एको कवाओ, तिस ते होए लख दरियाओ, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख जप असंख पाओ, असंख पूजा असंख तप ताओ, असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ, असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पाख सार, असंख मोन लिव लाए तार, कुदरत कवन कहा विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख मूरख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे, असंख मलेश माल पाखो खाहे,

न पाइया पंडती जे होवै लेख पुराण वखत न पायो का दिया जे लिखन लेख कुराण थित वार न जोगी जाने रुत माहो न कोई जा करता सिर ठीक हो साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यों वरनी केव जाना नानक आखण सब को आखै एक दू एक सियाणा वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका होवै नानक जी को आपौ जाणै अगै गया ना सोहै पातला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क पाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असुलु एक तात लेखा होए ता लिखिए लिखै होए विनाश नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप सालाही सालाही एती सुरत ना पाईया नदियां अतै वाह पवै समुंद ना जानिए समुंद साह सुलतान गिरहा सेती माल तन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मन होना विसरा है अंत न सिफती कहन ना अंत अंत ना करना देन ना अंत अंत ना वेखण सुनन ना अंत अंत ना जा

आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एक दो जीव लाख होवे लाख हो वै लाख वीस लाख लाख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश। एत राह पत पवड़िया चढ़िया हुए इकीस सुन गला आकाश की कीटा आई रीस। नानक नदरे पाई है कूड़ी कूड़े ठीस आखण जोर चुपै नह जोर जोर ना मंगण देन ना जोर जोर ना जीवन मरण नह जोर जोर ना राजमाल मन सोर। जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार। जिस हाथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। राती रुती थिती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगती।

तिथै सोहन पंच परवान, नदरी कर्म पवै निसान, कच पकाई ओथै पाए, नानक गया जापै जाए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म, केते पवन पाणी वै संत्र, केते कान महेश, केते बरमे घाड़त घड़िया है रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश, केते

कितिया सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाद विनोद कूड आनंद। सर्म खंड की बाणी रूप तिथे घाड़त घड़िए बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां ना जाहे जे को कहे पिछे पशुताए। तिथे घड़िए सुरत मत मान बुद्ध तिथे घड़िए सुरां सिद्धां की सुध। कर्म खंड की बाणी जोर तिथे होर ना कोई होर। तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहया भरपूर। तिथे सीतो सीता महिमा माहे ताके रूप ना कथने जाहे। ना ओहे मरहे ना ठाके जाहे जिन कै राम वसै मन माहे। तिथे भगत वसै के लू करे आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार कर कर वेखै नदर निहाल। तिथे खंड मंडल वर पांड जे को कथा है ता अंत ना अंत। तिथे लो आकार जीव जीव हुक्म तिव तिवकार। वेखै विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार। जात पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार। पाओ खला अगन तप ताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल। घड़िए शब्द सची टकसाल जिन को नदर करम तिनकार। नानक नदरी नदर निहाल। सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए। दाई दाया खिले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया। वाचे धर्म हदूर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर। जिनी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले केती।

स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाथे सदा सर्व साथे अबाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पोत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताता न माता न जाता न पाता है निरसाकं सरीक है अमित अमीक है सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती शांतत्व प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमें सुसलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग है के सुनल चराग है के कामल करीम है के राजक रहीम है के रोजी दहन है के राजक रहंद है क्रीमुल कमाल है के हुस्नुल जमाल है गनीमुल खिराज है ग्रीबुल निवाज है हरीफुल शिकन है हिरासुल फिकन है कलंकं प्रणास है समस्तुल निवास है अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है कि नरकं प्रणास है बहस्तुल निवास है कि सरबुल गवन है हमें सुलरवन है तमामुल तुमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईश है समस्तुल अदीस है अदेसुल अलेख है हमेसुल अपेख है जमीनल जमा है अमीकुल इमा है क्रीमुल कमाल है कि जोरत जमाल है कि अचलन प्रकाश है कि अमितो सुबास है कि अजब स्वरूप है कि अमितो विभूत है कि अमितो पसा है के आत्म प्रभा है के अचलंग अनंग है के अमितो अपंग है मधुभार शांतत्व प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंजो अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनाश मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनचे जो अंग आसन अपंग उपमा अपार गतमित उदार जल थल अमंड देश वेश अपंड जल थल महंत देश वेश बेअंत अनुभव अनाश तृप्त तर तुरास अजान बाहु एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरुबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनशेज गात आजिज न बात अनचंज गात अनरंज बात अनटट भंडार अनठट अपार अडीठ कर्म अतटीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना शांत तो प्रसाद करुणाल है अरकाल है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है काल कारण है सर्व उबारण है त्रेत के तरण है जग के करण है मन मान है जग जान है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्वपास्य है सर्वनाश्य है करुणा कर है विश्वम्र है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खालखंडस है परते पर है करुणा कर है अजपा अजप है अथपा अथप है अकृताकृत है अमृतामृत है अमृतामृत है करुणाकृत है अकृताकृत है तरणी कृत है अमतेश्वर है परमेश्वर है अकृताकृत है अमृतामृत है अजबाकृत है अमृतामृत है नर नायक है खालकायक है विश्वम्र है करुणालय है निरपनायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अरे गंजन है रिप तापन है जाप जापन है आकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हर्ता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्म वास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राजसंग तामसंग शांत रूपे नमो परम तत्ंग अततंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो ज्योत ज्योते नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अश्री छंद अजय अलय अपय अभय अबू अजू अनास आकाश अगंज अपंज अलख अपाख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगा अढ़ा अनाथे प्रमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तुल प्रणामे समस्तुल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे नृकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुकर्मंग विभूते
सदा सच्चिदानंद सतरंग प्रणासी क्री मल कुनिंदा समस्त निवासी अजायब विभूते गजायब गनी में हरिअंग करियंग क्रीमूल रही में चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र पुगते सुयं भव शुभं सर्वदा सर्वजुगते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेबूते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवि पातशाही दसवीं तो प्रसाद सवैये श्रावक सुध समूह सिदान के देख फिरियो कार जोग जति के सुर सुरार्दन सुध सुधाधिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राणपति के श्री भगवान की पाए कृपा हूँ ते एक रति बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सुवारे कूट तुरंग कुरंग से कूदत पावन के गौन कौ जात निवारे पारी पूजान के पूप पली बेत न्यावत शीस न जात बिचारे केते पय तो कहा पय पूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बांजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूड गजान के सुंदर हिंसत ही हाय राज हजारे पूत पवेक पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिना अंत को अंत के ताम सुधारे तीर्थ नान दया दम दान सो संयम नेम अनेक बसेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सबै सो विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन पूपत एक रति बिन एक न लेख है सुध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज सनाह दुर्जान दलेंगे परि गुमान परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीर मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पात श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अब चार सार की तार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गड़ान को तोड़न हार सो बात नहीं चक चार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनेंद ने साचर भूत पवैख पवान जपेंगे जीव जित जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थापेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहो पूंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जाग सत्र सवय अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नरातप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कूट इश नानक जादिक दान अनेक सुअंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिसन सचिपत अंत फसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस हैं पाग ते नर फिर न देह तरेंगे कहाँ पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नाहत फिरियो लिए सात समुन्द्रन लोक गयो प्रलोक गवायो भास कियो बिख्यान सो बैठ कै ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग करे लटकायो काहू लखे ओ हर अवाची दिशा में काहू पशा को शीस नेवायो को बुतान को पूजत है पाश को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सबै तुम कावो आप हाथ दय मोहे बचावो सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा
मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संग्रिए, पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है, हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दा सकंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो, जवन काल सब लोक सुवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो, आद अंत एक है अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी, सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछानै, काट काट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब अकर्ख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ट सब तार, आप आपनी बूझ उचार, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ, ताका मूड उचारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताकौ कर पाहन अनुमानत, महामूड काश भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप अपने बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तोहे तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, किह बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, ओत भुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हवै बैठा, कहूं सिमट भयो संकरे कैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारो असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रणकाता। जे अस तुज तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे नहर हो, ताके ताप तनक मोहर हो। रिद सिद घर मोह सब होई, दुष्ट शाश्वाय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा,

अमृत सदा रहो हर रंग जपे हो सारंग पाणी कहे नानक सदा गावहो एह सची बाणी सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी बाणी ता कच्ची सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी कहंदे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी हर हर नित कर है रसना कहया कछु न जानी चित जिन का हिर लया माया बोलन पै रवाणी कहे नानक सतगुरु बाजहो होर कच्ची बाणी गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ शब्द सेती मन मिलिया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ सेव साकत आप उपाए कहे करता आपे हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुकत शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनो आप करे सो होवे एक सस्यों ले वलाए कहे नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे ततै सार न जानी ततै सार न जानी गुरु बाजहो ततै सार न जानी तिह गुणी संसार भ्रम सुत्ता सुतिया रैन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोलै अमृत बाणी कहे नानक सूर तत पाए जिसनु आन दिन हर लेव लागै जागत रैन विहानी माता के उदर मैं प्रतपाल करे सो क्यों मनो विसारी है मनहो क्यों विसारी है ए वड़दाता जे अगन मैं आहार पहुंचावे ओस नौ के हो पोहे न सकी जिस नाओ अपने लिव लावे अपने लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभाली है कहे नानक ए वड़दाता सो क्यों मनो विसारी है जैसी अगन उदर मैं तैसी बाहर माया माया अगन सब इको जे ही करता खेल रचाया जात इस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया ए माया जित हर विसरै मोह उपजै भाओ दूजा लाया कह नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसे विटहो रहे लोक वेल लाए ऐसा सात गुर जी मिलै तिसनों सिर सौंपिया विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहा हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वण जारा हर रास मेरी मन वण जारा सतगुरु ते रास जानी हर हर नित जपे हो जियो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे पाणा कह नानक हर रास मेरी मन हुआ वण जारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास न जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बहुड़ न तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन जाओ भया प्रभ आगम सुनया हर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदर बनया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापय गुर चरण लागे दिन सभागे अपना पिर जापय
अनहत बाणी गुरु शब्द जानी, हर नाम हर रस भोगो, कहे नानक प्रभु आप मिलिया, करण कारण जोगो। ए शरीरा मेरिया, इस जग मैं आए कह क्या तुद कर्म कमाया।

मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक एहो शरीर परवान हुआ, जिन सत गुर स्यो चित लाया। ए नेत्र हो मेरे हो हर, तुम मैं ज्योत धरी, हर बिन अवर ना देखो कोई,

वरना कोई कह नानक ए नेत्र अंध से सतगुर मिले देव दृष्ट होई। ए सरवण हो मेरे हो सचै सुनणै नो पठाए सचै सुनणै नो पठाए शरीर लाए सुनहो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया होआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही न जाए कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सचै सुनणै नो पठाए हार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे परगट किए दसवां गुप्त रखाया

0: महले पहल के लिखे। टुंडेस राजे की दिनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरु अपने देवार सवार, जिन मानस ते देवते किए, करतना लागी वार महला दूजा।
1: जे सोचन दव कवै सुर चढ़ हजार, कीते जानन
2: गुर बिन कोर अंधार महला पहला।
3: नानक गुरु ना चेतनी मना अपने सुचेत, छुट्टे तिलबुआर जो सुने अंदर खेत, खेत अंदर छुट्टिया कहो नानक सौ नहा। पली है फुली है बपुड़े, पीतन विच सुहा पूरी।

तगना इंद्री तगना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तगना पैरी तगना अखी तगना जेवा तगना अखी वे तगा पिवत वटतागे अवरा कत।

सत्संग जी। बोलो जी, वाहेगुरु वाहेगुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय बार श्री भगवती पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय। फिर अंकित गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय। अर्जुन हर गोविंद नु सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याय के सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया करण उन दयावता है। सब थाई हुए सहाय दसवें पाचिया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय। दसा पाची दे पुत्र आत्मक रूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब के पारदार दाते अंतर के घर सत। बोलो जी वाहे गुरु। गरीबन महाराज आप जी दे पंज प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटिया जपिया टपिया जिन्हें नाम छपिया बन छकिया देख चलाई ते वाहे देख डेढ़ किया तेना प्यार सत्यारा की कमाई का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। जिन्हा सिंगा सिंगणिया धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपड़िया लवाइया चरखड़िया से चले आड़ नजर आए गए गुरुद्वारे सेवा कुर्बानियां की धर्म ने आ रहा से किसी तरीके सत्संग दवाया तिना भी कमाई का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। पंजा तख्त आसमत गुरुद्वारा का ध्यान करके। बोलो जी वाहेगुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। नाम चित आवे चित आवण का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां गुरु खालसा साहब तहां चरियात देखते की फतेह बिरत की पहच पंथ की जीत श्री साहब जी से आए खालसा जी के बोल भले। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां नूं सिखी दान केस दान रैत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन इशनान चौकियां चंडे मुंगे जुगड़े वाटन धर्म का जयकार। बोलो जी वाहेगुरु। सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत के रखे आप वाहेगुरु। गुरु गरीब नवाज पंथ सदा सहाय दता दियो गुरुद्वारा ननकाणा साहिब पंजा साहिब ते होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हां तो आप दे पंथ नूं छोड़िया गलां सरदार सेवा संभाल दा दान अपने खालसा जी नूं बख्शो। ये नोटियां दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार दोए कर जोड़ करो अरदास तू तो भावे ताने रास। ये गरीब नवाज जी आप ही बेचान कामना दरदास ने दान बख्श की है। अमृत वेले प्रकाशमान हुए संगत नूं दर्शन दर दे के निहाल दता दियो बेअंत बाणियां दे पाठ ऐसे रागी सिंह ने आपके चरणा जासा की वार्ता कीर्तन किए ने विद्वान वीर ने अज हुक्मनामे की कथा चार की कृपा करो हो यहां भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान गुरबाणी का भाव सारिया संगत हिरदे सहनी कृपालता करो जी। अगो तो शोर से पित्र बाणी चारनी मन बुद्धि बख्शिश करो गरीब आज इस खुशी में आप जी ने बख्शिया दाता पित्र कड़ाप शादी देगा तैयार करें हाथ ने सतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत रत्ना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी का पुत्र नाम जब बख्शिश करो दतार जी। दुखां कलेशां रोगां का नाश करो सुखां का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो दीप इवन आज आप दी बख्शियां दातां ने नगरां तुर सेवारियां प्रवान कर दी दतार आप दे चरणां सेवा कर दे सारे प्यारिया सिंघां सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करो बख्शो अते सदा ही इसे तरह अपने चरणां सेवा दी भावना में कृपालता करो। गरीब नवाज जी कृपा करो दतार अमृत वेले तो लैके दरते आई साफ संगत निहाल जी दर प्रवान करो घड़िया लिखे लाओ संगत का दर देते हूं पेटा प्रवान शुभ कामना पूर्ण करो जी। गरीब नवाज कृपा करो खालसा पंथ सिख कौम एक रात भाग पे आज बख्शिश करके सत संतोष दाल बख्शो चैनल जोड़ो गुरबाणी ने प्यार बख्शिश करके दतार हर मैदान जवान फतेह बख्शी कृपालता करो जी। गुरु गरीब नवाज दूर दराधिकार बैठिया लाल कृपा की सरवण करिए सारे संघ हाजिर प्रवान करो घड़िया लेके लाओ दतार आपने कृपा की संगत उदो बख्शे संगत आपके जाना धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेहद माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर देवाल सिंह अवतार संगत माया पेटा करी चरना प्रवान करो बख्शिया साहब की कमाइया सफल करो कार्ज वाद दतार सार संगत शुभकामना समाधान पूरी करो जी दतार मेहनत करे आओ सेवा प्रवान करो भुला चुका की माफी बख्शो बेहतर हुक्मनामे बख्शिश करके उपरंत लड़ी वार सहज पाठ करने वास्ते आगे बख्शो रेंदे कार्ज वार के चरना सुना दी बनाओ सही प्यारे मेरे जिन्हें अपने आपका नाम जतावा नानक नाम चलती कला तेरे भाने। वाहेगुरु जी का खालसा।

बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी सुखी हूं सुख पाए माए कीम न माए की न कीम गणी सुख

किसनो तिस न विसारिया, जो किछ करे सो आप अपन भाणिया, भगता का सहाई जुग जुग जानिया।

आठ पहर गुण गाय, साधु संगी रहाउ भोग भोग अनेक, विणना वै सुनिया हर की भगत बिना।

जाऊं। जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाइए, रैन दिन कर जोड़ हर हर त्याई है। नानक का प्रभ सोए जिस

रस कस सब लागै, आव मीत इकत्तर होए, रस कस सब पुंचो है, अमृत नाम हर हर जप है।

खीन भय सब तस्करा गुरमुख जन जागे रहाओ बुद्ध गरीबी खर्च लहु हौ मैं बिख जा रहू साचा हट पूरा सौदा वखर नाम वापारहू जियो पिंड धन अर्पया से पतवंते आपनड़े प्रभ भाणिया नित केल करंते दुर्मत मद जो पीवते बिखली पत कमली राम रसायन जो रते नानक सच अमली आसा महला पंजवां।

सब ब्रह्म भाओ भागा, हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा भारा, करण करावन सगल विद सो सत

तुम साधु भाव कर तौ निध हर पाव सगली दासी ठाकुर है सब कहती मेरा जिसे सिगारे नानका तिस सुख।

आठ पहर कर जोड़ रहो तो भेटै हर रायरी। तिस ही चज सिगार सब साई रूप अपारी। साई सुहागण नानका जो पाणी करतार री। आसा।

चितवो चितव सर्व सुख पावो, आगे भावो के न भावो, एक दातार सगल है जाचक, दूसर कह पै जावो, हौ मांगो आन ल जावो, सगल छत्रपत एको ठाकुर, कौन समसर लावो रहाओ, ऊठो बैसो रह पे न साको, दर्शन खोज खुजावो, ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन।

नैन उरतारी श्रवणी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा घर दसवां महला पंजवां जिसनों तू

है नाम लैत अलकाया निंद चिंद को बहुत उमायू बूझी उल्टाया पर तन पर तन परति निंदा अखाद खाहे हरकाया साच धर्म स्यों रुच नहीं आवे सत सुनत छोहाया दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर भगत टेक हरनाया नानक आहे शरण प्रभ आयु राख लाज अपनाया आसा महला पंजवा मिथिया संग संग लपटाए मुह माया कर बाधे जह जानो सोचित न आवै अहंग।

बुद्ध भय अंधे मन बैरागी क्यों ना अराधे काच कोठरी माहे तू बसता संग सगल बिखै की व्याधे रहाओ मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावै पल खिन छीजै अरजाधे जैसे मिथ्या साध लुभाए झूठ तंद दुर्गाधे काम क्रोध अर लोभ मोह ए इंद्री रस लपटा दे।

दीन दुख भंजन कहो गुरमिल सब सुख लाधे कहो नानक दिन रैन दयावो मार काढ़ी सगल उपाधे इउं जप्यो भाई पुरख बिधाते भयो कृपाल दीन दुख भंजन जन्म मरण दुख लाथे रहाओ दूजा आसा महला पंजवा निमक काम स्वाद कारण कोट दिन सुदुख पाव है करी मोहत रंग मान है फिर बहुर बहुर पछताव है अंधे चेत हर हर राया तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ पलक दृष्ट देख भूलो आक नीम को तुमर जैसा संग बिसियर स्यो है रे तैसो ही इहो पर ग्रहु बैरी कारण पाप करता बस्त रही अमाना छोड़ जाहे तिन ही स्यों संगी साजन स्यों बैराना सगल संसार इह

आओ जित जित लाए तित तित लागे क्या को करे परानी बख्श लहु पार ब्रह्म स्वामी नानक सद कुर्बानी आसा महला पंजवा अपने सेव की आपे राखे आपे नाम जपावे जह जह काज किरत सेव की तहा तहा उठता वै सेवक को निकटी हुए दिखावे जो जो कहे ठाकुर पह सेवक तत्काल हुए आवे रहाओ ते सेवक कै हों बलिहारी जो अपने प्रभ पावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसन आवे आसा घर ग्यारवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नटुआ भेख दिखावे बहुविध जैसा नटुआ भेख दिखावे बहुविध जैसा है वह तैसा रे अनिक जोन

हमरा ठाकुर सब ते ऊंचा, रैन दिन सुतिस गावो रे, खिन मैं थापु थापन हारा, तिस ते तुझे डरावो रे रहाओ। जब देखूं प्रभ अपना स्वामी, तो अवर है चीत न पावो रे, नानक दास प्रभ आप पहराया, भ्रम पौ मेट लिखावो रे। आसा महला पंजवा, चार बरन चौहा के मर्दन, खट दर्शन कर तलीरे, सुंदर सुगर स्वरूप सियाने, पंचो ही मोहि छली रे।

धन सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोई। एक टेक आधार इको, एक का मन जोर। नानक जपिए मिल साध संगत, हर बिन अवर न होर।

आप कृपाल कृपा प्रवतारी, सतगुर बख्शिया हर नाम, कल युग उधारिया गुरुदेव, मल मूत मूड जे मुगद होते, सब लगे तेरी सेव रहाओ। तू आप करता सब सृष्ट धरता, सब मह रहा समाए, धर्म राजा बिस्माद हुआ, सब पई पैरी आए। सतयुग त्रेता द्वापर भणिए, कल युग ऊतमु जुगा माहे, एह कर करे सो एह कर पाए।

समूह प्रबंधक साहेबान धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का जिन्ना शुकराना करिए थोड़ा है, डॉक्टर गुरनाम सिंह, वीर गुरप्रीत सिंह, वीर राजविंदर सिंह जी उस्ताद जी और भाई निर्मल सिंह जी जिन्हों के उदम सदका समूह प्रबंधक साहेबाना का सदका आप सारे ने ये जो महाराज की बाणी सारी रागों में गाई है, निरोल रागों में गा के हाजरी भरी है। आओ हुण समाप्ति है, सलोक पढ़ांगे नाल ही अरदास विच आपां गा। ਸਲੋਕ ਪਵਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਕੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ

बेनती कर दें आप जी दे चरणा च। कलगी वाले धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जिथे देग देग ते धनी हन, सरबंस सुदानी हन, खालसा पंथ के सृजन हार हन, उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह बहुत वड्डे संगीतकार भी हैं। सतसंग बोलो श्री दास ने आरंभता की धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी के बचना बिन करतार न किरतम मानो राग कल्याण पातशाही दसवीं जिथे गुरु ग्रंथ साहिब दे विच 31 राग सिकल हन, 31 राग ही मिश्रित हन, 62 राग एडा वड्डा खजाना। उथे ही धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने 177 राग गाए ने, 177। सात संगत बोलो श्री इदी परचोल 1990 दे विच शुरू हुई सी और इनू 2 साल लगे सन लुधियाने विच। दास उदे विच शामिल सी। ए बहुत वड्डी देन है धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी, बहुत वड्डी देन है सात संगत। जे असी उस देन नू संभाल सकीए शायद साडे पुरब मनाए सफल हो जान, इत्थे आउणा सफल हो जाए। जिस मार्ग ते जिस रस्ते ते सतगुरु धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने सानू तोरना चाहिया उस रस्ते ते किते असी भी तुर पईए ते शायद इस जीवन विच इस लाइफ विच ऐसी क्रांति आ जाए। क्रांति ए उही क्रांति ते सी सतगुरु बेहर करन बख्शिश करन। सरबत दा हार्दिक तौर ते धन्नवाद।